कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रशादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इथे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सोतक पातक नहीं मनदे। इथे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती की, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर झूठा सूतक आला। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखा नूं प्यारियां नूं भेजिया, जाओ तुसी प्रशादा छके आ। सिखा ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज

बजाज, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् देश भी वक् और इन चीजों का असर इंसान से होंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपा मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा? अगली

अल्लाह अपेक्ष होई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़ दे मुसलमान कुरान पढ़ दे मुसलमान अल्लाह नु याद कर दे हिंदू राम नु याद कर दे ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचिए दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है मकसद दोनों दा

ब्राह्मण शूद वैश्य और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान करदे चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

राम रहीम कहाईंदे। एक नाम हिंदू राम कहंदा, मुसलमान रहीम कहंदा। राम रहीम कहाईंदे एक नाम, परमेश्वर एक है उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान रहीम कह रहे हैं, पर वो एक है। दो राह पुलाने, पर देखो ये दोनों किवें सच दा राह भुल गए ने, और परमेश्वर दे नाम ते एक दूसरे नाल झगड़ा पै कर।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा के उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने ये हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे, भाई गुरुदास जी बयान करते हैं।

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पे, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।